0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमंत स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: आई गई क्या आज तो पहिला नौकरी को पहिला महीना तनखा खाइकन आएकी होली मेरी चेली
2: तनखा खाइकन होइन बुवा तनखाले भोलिका दिन कि ढुक्क पारिकन आएकी छु हो भन्या बुवा पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफमा त कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाइका लागि बाल भविष्य योजना, तमिरे आमाका रिटायरमेन्ट समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना, वाचि मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन, त्यसैले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
1: ठिक गरिबा, आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन, तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ।
2: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त, होइन बुवा? सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हिटो छ। झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-597-02-17 सम्पर्क हर्या।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरा।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहीं एक आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अभी ही जाबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: भरना खुल्यो भरना खुल्यो भरना खुल्यो
4: यस सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टिकापुर कैलालीमा सामान्य चिकित्सा SA कार्यक्रम अध्ययनको लागि भरना खुल्यो
3: फारम भर्ने मिति 2083 वैशाख 29 गते देखि जेठ 13 गते सम्म
4: अनलाइन फारम सम्बन्धमा पढ्न इच्छुक विद्यार्थीहरूले यस सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टिकापुर कैलालीमा आएर सहयोग लिई फारम भर्न सक्नुहुनेछ अथवा www.cteexam.org.np मा उपलब्ध गराइएको ITMS अनलाइनमा भरि सबमिट गर्नुपर्नेछ
3: सामुदायिक क्याम्पस भएकोले एसए कार्यक्रममा ₹3,23,200 शुल्कमा मात्र अध्ययन गराइन्छ
4: आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन भएको व्यवस्थित प्रयोगशाला र विषय विशेषज्ञद्वारा कक्षा सञ्चालन गरिन्छ
3: आवेदन फारम शुल्क ₹1,000 लाग्नेछ
4: फारम भर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरू
3: SEE, SLC वा प्राविधिक SLC को शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि नागरिकता वा जन्म दर्ता लक्षित वर्गमा फारम भर्नु परेमा आफ्नो वर्ग खुल्ने प्रमाण पत्र र स्पष्ट मुखाकृत देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो
4: नोट सामान्य चिकित्सा HA अध्ययन गर्नको लागि न्यूनतम 2 GPA हुनुपर्नेछ सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टिकापुर कैलाली सम्पर्क नम्बर 0915602038 98584-7079 98484-6786 र 98445-4997

0: विद्युत महाशुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सूचना 2083 असार 1 गते से टीकापुर वितरण केन्द्र हो लम्की यूनिट कार्यालय अन्तर्गत के संचालित विद्युत महाशुल्क काउन्टर बन्द गर्न लक्ष्य रहेको छ। विद्युत महाशुल्क अनलाइन माध्यम से भुक्तानी गर्न सक्कु ग्राहक महानुभाव फुक्रान यह सूचना से जानकारी कराई थी। विद्युत महाशुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न समय बिहान के 8 बजे से रात के 12 बजे सम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुर कैलाली।
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां करण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से। बाल क्लब के पदाधिकारी तथा शिक्षक हुकरण विपद पूर्वा सूचना जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलन संबंधी कार्यक्रम। जालवा देवी सेवा समिति टीकापुर के 13 अधिवेशन ओराइल अध्यक्ष में रामबहादुर साउ चयन। आज देशभर मौसम बदलना कहरो मेघगर्जन सहित वर्षा तो कहरो टाटुल हावा चलना संभावना हो। एशियन छनौट खेल केला क्रिकेट टोली छनौट। आप पूरा खबर। बाल क्लब के पदाधिकारी तथा शिक्षक हुकरण विपद पूर्वा सूचना विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलन संबंधी एक दिने जनचेतनामूलक कार्यक्रम टीकापुर में होइल बा। टीकापुर नगरपालिका के आयोजना में होइलक कार्यक्रम में टीकापुर बहुप्रकोप के जोखिम रलक तमाम खाल के विपद से बचकलक पूर्व तैयारी पूर्व सूचना महत्वपूर्ण बात रलक में जोर दै गेल बा। पालिका से समुदाय स्तर पुस्तक वाड़ा स्तर में जनचेतनामूलक कार्यक्रम करते बा। बाल बालिका हुकरण के तथा शिक्षक हुकरण के ढेर समय विद्यालय में बैठना रलकोर्से विद्यालय में समेत विपद आईसेकना रलकोर्से सचेत बनैना कहलवा। पूर्व तैयारी ओ व्यवस्थापन में सक्रिय बनैना कार्यक्रम करगिल वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरी बटेले बाटै। तालीम में 18 थो विद्यालय के बाल क्लब आबद्ध विद्यार्थी हो शिक्षक सहभागिता रहल रहे विपद जोखिम न्यूनीकरण के लाख शिक्षक और विद्यार्थी सचेत हुके सहज हुईना रलक ओर से वहां के सक्रियता बढ़ेलक बटवागिल बा। जनता राष्ट्रीय मावि सोना फाटा के शिक्षक जयसरा शर्मा बहुप्रकोप के जोखिम रलक ओर से भोक्ति रलक यहां के नागरिक से विपद व्यवस्थापन के बारे में जानकारी पैलक में अपना फे सुरक्षित हुईना हो और जहां फे सुरक्षित कर सकना बटोले बाटे। विपद के बारे में विद्यार्थी उकरण की भूमिका बढ़ सकना रलकमा जनचेतना फैलेना सेक्ले से समुदाय में ढेर समेत ओ आग लागी भूकंप जैसन विपद से कैसे के बच सकना गहना बारे में सचेत कराइना सहयोग पुग्ना बटोले बाटे। कर्णाली मावि शक्ति के शिक्षक विनोद कुमार चौधरी से विपद के बारे में थप आवश्यक जानकारी लेना रहल बटोले बाटे। खड़गा स्मृति मावि टीकापुर के विद्यार्थी अमित परियार विपद व्यवस्थापन में पालिका के केल जिम्मेवारी नहीं हुके सबको जिम्मेवार रलकोर से विद्यार्थी समुदाय हे सिखाई पर्ना वृक्षरोपण सरसफाई जैसन काम में ध्यान देह पर्ना बटोले बाटे। कर्णाली मावि के विद्यार्थी निरुता कुमाल विद्यार्थी जानकार रलक पूर्व तैयारी समेत में सहयोग पुग्ना बटोले बाटे। आपातकालीन नम्बर सुरक्षित स्थान के बारे में जानकारी लेना और जहन फे जानकारी देना सहयोग करना काम में सक्रियता बढ़ेना बटोले बाटे और विद्यार्थी

0: विद्यार्थियों के कहाइबा हाल देश में पश्चिमी वायु स्थानीय वायु तथा नेपाल के पूर्वी भूभाग लग्न रहल न्यूनचापीय क्षेत्र के प्रभाव रहलबा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार कोशी प्रदेश लगायत के बागमती और गंडकी प्रदेश के हिमालयो पहाड़ी भूभाग में के साथ कर्णाली और सुरपश्चिम प्रदेश के हिमालय भूभाग में साधारणतया मौसम बदलतीबा मध्य प्रदेश लगायत के बाकी लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी और हिमालय भूभाग में आंशिक मौसम बदलना तथा बाकी तराई भूभाग में मौसम मुख्यतया सफरहल महाशाखा से जमाइल बा कोशी और गंडकी प्रदेश के कम स्थान में मेघगर्जन चट्टांग सहित मध्यम वर्षा के साथे बागमती प्रदेश के एक दो स्थान में हल्का वर्षा होइत रहल बा दोपहर के कोशी बागमती और गंडकी प्रदेश में साधारणतया मौसम बदलना बाकल से मध्य प्रदेश के बाकी प्रदेश हिमालय और पहाड़ी भूभाग में आंशिक मौसम बदलना बा कलश तराई भूभाग में मौसम मुख्यतया सफल रहना बा कोशी बागमती और गंडकी प्रदेश के कुछ स्थान में मध्य प्रदेश लगायत के लुम्बिनी कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमालय और पहाड़ी भूभाग में कम स्थान में मेघगर्जन चट्टांग सहित मध्यम वर्षा के संभावना बा हिमपात की संभावना रलक महाशाखा से फे जनाइल बा सुदूरपश्चिम और लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में तातुल दिन तथा तराई भूभाग में तातुल लहर के संभावना बा आज रात के कोशी मधेश बागमती और गंडकी प्रदेश लगायत के बाकी हिमालयी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलना बाकल से बाकी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में आंशिक मौसम बदलना बाकल से बाकी तराई भूभाग में मौसम मुख्यतया सफा रहना बा महाशाखा के अनुसार कोशी बागमती और गंडकी प्रदेश के कुछ स्थान तथा मध्य प्रदेश लगायत के लुम्बिनी कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में कम स्थान में मेघगर्जन चट्टांग सहित मध्यम वर्षा और हिमपात के संभावना रहल बा खोजखर माए घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टीका एफएम
1: महाकाली बहु प्राविधिक शिक्षालय कंचनपुर को विद्यार्थी भर्ना संबंधी सूचना
2: सिटी भिटी बाट सम्बन्धन प्राप्त महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुरमा न्यूनतम शुल्कमा प्राविधिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू अध्यापन गराउन शैक्षिक सत्र 2083-84 का लागि 3 वर्षे प्रमाण पत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सीएमएलटी 30 जना सामान्य चिकित्सा एचए 40 जना नेत्र विज्ञान ओए 40 जना डिप्लोमा इन फार्मेसी डीपीएस 40 जना विद्यार्थीहरूको अनलाइन फर्म खुलेको सहर्ष जानकारी गरिन्छ
1: भर्ना कार्यक्रम
2: अनलाइन आवेदन फारम वितरण शुरू बैशाख 29 गते देखि
1: अनलाइन आवेदन फारमको अन्तिम मिति जेठ 13 गते बुधबार
2: आवेदन फारम शुल्क ₹1000 मात्र अनलाइन आवेदन फारम www.ctvt.exam.org.np को ITMS मा भरी अनलाइन सबमिट गर्नुपर्नेछ अनलाइन आवेदन फारम भर्नका लागि एसएका कागज पत्र ल्याई शिक्षालयमा भर्न सकिनेछ
1: आवश्यक कागज पत्रहरू
2: एसई एसएलसी उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता सकल डाटा स्क्यान गरिएको प्रति
1: जन्म दर्ता नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र स्क्यान प्रतिलिपि
2: लक्षित वर्ग खुल्ने कागजातहरूको स्क्यान प्रतिलिपि
1: स्पष्ट मुखाकृति देखिने हाल सालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो
2: कोटामा भर्नु पर्ने भएमा सो स्थानीय तहको सिफारिस
1: सम्पर्क स्थान महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर
2: सम्पर्क नम्बर 0969900044 9858700044 9847202740 9642813921 र 9669963520
3: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
4: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू
5: नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बञ्चरो
4: हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला
3: ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली
4: संचालक मदनराज देवकोटा स्थान साठी अस्पताल को ठेक्क अगाड़ी संपर्क नंबर 98।

0: 49 85 18 08।
1: कर्णाली नमुना मावि टीका पूर्वक शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 मा विभिन्न संकायमा भर्ना खुल्यो।
2: कर्णाली नमुना माध्यमिक विद्यालय टीकापुरमा विज्ञान र इन्जिनियरिङ संकायमा उत्कृष्ट नतिजा सँगै शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 कानून होटल म्यानेजमेन्ट मानविकी र शिक्षा संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुलेको सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा जानकारी गराइन्छ। सिट सीमित छ, आजै सम्पर्क गर्नुहोस्।
1: जेहेन्दार प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थी र खेलाड़ीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको छ।
2: कर्णाली नमुना माध्यमिक विद्यालय टीकापुरका विशेषताहरू:
1: फराकिला कक्षाहरू,
2: विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला भएको,
1: पुस्तकालय तथा ई लाइब्रेरीको व्यवस्था भएको,
2: खेलकुद सुविधा,
1: कम्प्युटर शिक्षा,
2: स्वच्छ पिउने पानी,
1: क्यामेराको निगरानी र यातायातको सुविधा पनि छ।
2: कर्णाली नमुना माध्यमिक विद्यालय टीकापुर कैलाली, सम्पर्क नम्बर 98584 24167।
1: तपाईको भविष्य निर्माणको एक सहयात्री
3: टीकापुर नगरपालिकाको ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा सञ्चालन बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना।
4: टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका वडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, तपसिलको स्थान, मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ।
3: झुङ्गा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 9, जेठ 11 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
4: रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 3, जेठ 12 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
3: टीकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली।
5: विश्राम पाछि फेरि स्वागत बा। शिक्षक बलिराम चौधरी आफ्नो जन्मदिनके अवसरमा विद्यार्थीहरूको स्टेशनरी सामान प्रदान गर्नबाटै बाल सेवा मावि लम्की चुहा सात चाका बाँडीके 2082 सालके परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा लन्ना विद्यार्थी हुँग्रन उहाँ स्टेशनरी सामग्री प्रदान गर रखे। जन्मदिनके अवसरमा शिक्षक चौधरी से बाल सेवा माविमा शिशु कक्षा से लगे 10 कक्षासम्म पढ़ती रह 33 जना विद्यार्थी हुँग्रन शिक्षा कलम डट पेन ओ कपी प्रदान कर रखे। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 ब्लक नम्बर 24 निवासी शिक्षक चौधरी आइतबार के नै सेवा निर्वृत्त फे हुई लखे। चालुवा देवी सेवा समिति टीकापुरके अध्यक्षमा रामबहादुर साउत चयन हुलबाटै समितिके अटवारके ओडैलक 13 अधिवेशनसे साउतके अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय कार्य समिति चयन हुलेको हो। जेकर उपाध्यक्षमा तर्क बहादुर रावल, महासचिवमा माया साउत, सहसचिवमा जगत बिक, कोषाध्यक्षमा तर्क बहादुर रावल चयन हुलबाटै उक्तक सदस्यमा रणबहादुर रावल, मान बहादुर रावल, कटक रावल, कृष्णलाल ढुंगाना, राजेश्वरी रावल, छपत सिंह रावल चयन हुई बाटें। कलश निर्वाचन समिति के संयोजक केशव बहादुर रावल जानकारी दिले बाटें। अधिवेशन से भद्र रावल के संयोजकत्वमा काशीराम रावल और गणेश रावल सदस्य रहल। 3 सदस्य लेखा समिति फिर चयन हुई बा। यह आगे अधिवेशन के उद्घाटन करती टीकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगरजी से जालवा देवी सेवा समितिमा टीकापुरमा धेर नागरिकके सेवा लेलक बतैती इहे नागरिकके तहसे फे सेक्न जत्रा सहयोग गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नबाटै टीकापुर नगरपालिकाकै निवर्तमान नगर प्रमुख तपेन्द्र बहादुर रावल टीकापुरमा धेर मन्दिर रहलसे फेन नियमित पूजाआजा होइन मन्दिर कमे रहल बतवेलबाटै उहाँ यसैकै नियमित पूजाआजा गर्न मन्दिर हे नगरपालिका सहयोग करलक स्मरण करती यह निरन्तरता देहे पर्ना बटोले बाटै। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 के वाडाध्यक्ष मोहन लोहार विकासे आपन वाडा भित्तर रहल मन्दिरमा नियमित पूजा आजा केलक, आवश्यक व्यवस्थापन गर्न आश्वासन समेत व्यक्त गर्ल बाटै। टीकापुर स्थित शीत भण्डार गृहके संचालन तथा व्यवस्थापन समितिके प्रक्रिया शुरू हुइलबा। वैशाख 27 गते शुरू हुइलक साधन सभा मा संख्या नैपुग्य स्थगित हुलाक जेठ 10 गते औरा सभा बैठक हो। सभा के गणपूरक संख्या पुगल पास व्यवस्थापन समिति निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ़ाईले खुशी भण्डार गृह संचालन तथा व्यवस्थापन समिति 11 सदस्यीय कार्यसमिति केला 3 जाने महिला सदस्य 2 जाने खुला सदस्य 1 जाने दलित सदस्य हो सहसचिव पद केलाक मनोनयन दर्ता करलाक उम्मीदवार मध्ये कुछ जान के मनोनयन पत्र फिर्ता लेहल पाछे निर्विरोध निर्वाचित समेत हुईल बटवागिल्बा अध्यक्ष पद मा समेत निरबहादुर शाह हो कृष्ण प्रसाद बजगाई से उम्मीदवारी परलबा उपाध्यक्षमा पदमा चतुर प्रसाद खनाल ओ समेत संगम शाह के उम्मीदवारी परलबा सचिव पदमा धनीराम चौधरी हो दिनेश कुमार थारू के उम्मीदवारी परलबा कोषाध्यक्ष पदमा जनक कुमारी चौधरी ओ हीरा देवी चौधरी के उम्मीदवारी परलबा पदाधिकारी आवश्यक सफेद ढेर उम्मीदवारी परलक ओर से सोमवार के सहमति के प्रयास करना हो सहमति नहीं हुई से मंगलवार बिहान के 8 बजे मतदान करेना निर्वाचन संयोजक कुमार राज शाही जानकारी दिले बाटे रानी जमरा कुलरे सिंचाई आयोजना टीकापुर नगरपालिका जानकी गांवपालिका सिंचाई के कमान क्षेत्र में जल उपभोक्ता के संयुक्त लगानी में टीकापुर स्थित शीत भंडार गृह स्थापना हुई लग हो सरकार से बाजुराव हुमला जिला के सीमा संबंधी प्राविधिक पक्ष अध्ययन करके प्रतिवेदन पेश करना समिति गठन करलबा नापी विभाग के उपमहानिर्देशक सुशील डंगोल के संयोजकत्वमा समिति गठन हुलेखो भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल के अध्यक्षतामा अतवार के बैठक से समिति गठन करलक उहाँ के सचिवालय से जनाइलबा समिति में प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय गृह मंत्रालय कानून न्याय तथा सांसदीय मामिला मंत्रालय भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के 7 कर्णाली प्रदेश हो सुरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय की ओर से एक जाने जनप्रतिनिधि सदस्य रहना कहलवा उसक नापी विभाग के निर्देशक समिति के सदस्य के सचिव के जिम्मेवार दैगिलवा ऊ विषय में सघन छलफल पाछे समिति गठन करना सचिवालय से जनाइलबा खोजखबर में एक घड़ी विश्राम पाछे फिर से सुन्तिरवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम टीकापुर सामुदायिक पुस्तकालय टीकापुर कैलाली को बंद सत्र होने बारे को सूचना टीकापुर सामुदायिक पुस्तकालय को जेठ 9 गते छैठौं चुनावी साधारण सभा में विधान बमोजिम को गणपूरक संख्या अपुग रहेको हुँदा तपसिल को मिति स्थान र समयमा बन्द सत्र हुने भएकाले पुस्तकालयका आजीवन र संस्थागत सदस्यहरूलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। सभामा पेश हुने प्रस्तावहरू हाल विधानको धारा 27 को गणपूरक संख्या संशोधन सम्बन्धमा हाल विधानको कार्यसमिति गठनको दफा 16 को उपदफा 6 थप गर्ने सम्बन्धमा तपसिल मिति 2083 साल जेठ 14 गते समय बिहान 8 बजे स्थान टीकापुर सामुदायिक पुस्तकालयको सभा हल
6: जब जब गर्मी महीना आउँछ तब तब अमूल्य ब्रांड को आइसक्रीम को याद आउँछ मैंगो लीची कोला स्ट्रॉबेरी कुल्फी चोकोबार चोको फनबार आहा कति मिठो मलाई त सारै मन पर्छ। यति मात्र कहाँ हो र शुद्ध दूधले बनेको अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमको खोवा कुल्फी कर्नेटो र पार्टीहरूको लागि फ्यामिली प्याक पार्टी प्याकका सुविधा हुनुका साथै अन्य विभिन्न फ्लेभरका आइसक्रिमहरू र सादा आइस बलक पनि उत्पादन गरिन्छ। मैले त वर्षेनी खान्छु। अब खाने पालो तपाईँको जुन ठाउँ जानुहुन्छ उही ठाउँ पाउनुहुन्छ अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमहरू। एकचोटि खोजी खाऊ है।
7: यदि तपाई अमूल्य ब्रान्डका आइसक्रिमहरू बिक्री वितरण गर्न चाहनुहुन्छ भने धरौटी राखेर डिप फ्रिज उपलब्ध गराउने सुविधा रहेको छ। सम्पर्कको लागि बर्दादेवी डेरी उद्योग टीकापुर 1 ब्लक नम्बर 13 सम्पर्क नम्बर 98584 89455 र 98673 69622।
8: रियल मिल्क रियल आइसक्रीम अमूल्य आइसक्रीम खोजी खाऊ यी ब्रांड का आइसक्रीम जहां पनि उपलब्ध छ।
9: जानकी गाउँपालिकाको अत्यन्त जरूरी सूचना।
10: नेपालको संविधानको भाग तीन मौलिक हकको धारा 39 अन्तर्गत बालबालिकाको व्यवस्था भएको र बालबालिका ऐन 2075 बाल श्रम ऐन 2056 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समेतलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूले विवाह गरे गराइएमा भागे भगाएमा दुवै पक्ष कानून बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले 20 वर्ष मुनिका विवाहहरू विवाह दर्ता नहुने र स्वतः बदर हुने भएकोले आफू सचेत भई अरूलाई सचेत गराई कानूनको पालना गर्न गराउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई निकृष्ट प्रकारको श्रम जस्तै मोटर ग्यारेज होटल कारखाना गिट्टी बालुवा घरेलु कामदार गाड़ीमा सहचालक नलगाउन साथै धूम्रपान मध्यपान सुर्तिजन्य पदार्थको खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा बाल बालिकालाई संलग्न नगर्न हुन हार्दिक अनुरोध छ। यदि कसैबाट कानून विरूद्धका कार्यहरू भए वा गरे गराइएमा कानून बमोजिम कार्यवाही हुने बेहोरा सम्पूर्ण गाउँवासीहरूलाई जानकारी गराइन्छ।
9: अध्यक्ष गणेश चौधरी, बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका जानकी कैलाली।
11: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
12: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नै निकल छु।
11: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
12: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
13: याद कर भी मनीष मेडिकल हर टीकापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
14: डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार
15: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
16: विश्राम पाछ फिर से स्वागत बा। कंचनपुर के महेन्द्रनगर से दुई जाने सड़क आश्रित व्यक्ति उपरण के उद्धार करगिल बा। मेची महाकाली राष्ट्रीय उद्धार यात्रा 2083 के टोली से एक महिला एक पुरुष के उद्धार करगिल उद्धार करगिल वहां उकरण धनगढ़ी मानव सेवा आश्रम में लगिल मानव सेवा आश्रम के सदस्य उर्विन सापकोटा जानकारी दिले बाटे। धनगढ़ी उद्धार समेत करलक ओ गैल बैशाख 28 गते मेची मन से शुरू हुईलक यात्रा के क्रम में 120 जन के उद्धार करगिल वा कल से मानव सेवा आश्रम के सड़क में किनार में पेटी में रलक कष्टकर जीवन यापन नहीं करना परे गई के काकर भित्ता से लेके मेची पुल समके यात्रा शुरू कर गिल है। यात्रा कंचनपुर कैलाली हुई थी अटवा के बांके पुगल बाकल से असके दोलपा फाउंडेशन के समेत संस्थापक एवं गायिका आनी छेंग डोलपा ओ समेत आयोजक मानव सेवा आश्रम के टोली से उद्धार केलक वहां आपुगल बताइल बा। आश्रम के सदस्य सापकोटा से सड़क में आश्रित मानव उग्रण के उद्धार केलक देशव्यापी रूप में यात्रा करते रहक बैठे बाटे। वहां मानव सेवा आश्रम में देश के तमाम स्थान में 33 थो समेत सेंटर रहलक जानकारी दिले बाटे। गायिका आनी छेंग डोलपा के यात्रा में आर्थिक व्यवस्थापन करलक मानव सेवा आश्रम आउने व्यवस्थापकीय भूमिका निभाइती आयल बताइल बा। ओ नेपाल क्रिकेट संघ क्यान से सिंगापुर में हुईना मेस एशियन गेम्स क्वालिफायर 2026 के लाख नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली घोषणा करल बा। प्रतियोगिता में मे 31 से लेके जून 9 तारीख सम संचालन हुईना प्रतियोगिता के लाख 14 सदस्य टोली खिलाड़ी छनौट करल क्यान से जारी करलाक प्रेस विज्ञप्ति में जनायल बा। छनौट हुईना टोली के कप्तानी में दीपेन्द्र सिंह एरी रहल बा कलसे ओसंग करके टोली के कुशल भुर्तेल ओसक आसिफ शेख रोहित पौडेल संदीप जोरा कुशल मल्ला लोकेश बम
5: सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी लगायतकी खेलाड़ी समावेश करगिल बा शंकर के नन्दन यादव उस्तक करण केसी आसिफ शेख साहब अल उस्तक भीम सार्की रहल बतागिल बा ये समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से बाल क्लब के पदाधिकारी तथा शिक्षक उपकरण विपद पूर्वा सूचना जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलन संबंधी कार्यक्रम जालवा देवी सेवा समिति टीकापुर के 13 अधिवेशन ओरायल अध्यक्ष में रामबहादुर साउत चैन आज देश के भरिक मौसम में बदलना केहरू मेगाजन सहित पानी पर्ना तो केहरू टाटुल हाव चलना संभावना ओएसएन छनौट खेल के ला क्रिकेट खिलाड़ी छनौट लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकिए अबे के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीका प्रेफरेंस सुनती रह विराम राम।

0: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कोट पेट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैसे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
1: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने थेनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।
2: ए बा आई गई क्या? आज तो पहला नौकरी को पहला महीना तनखा खाईकन आए की होली मेरी चेली।
3: तनखा खाईकन होइन बुआ, तनखाले भोलि का दिन की धुक्का पारिकन आएकी छु। हो भन्या बुआ, पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफ नि त कस्ता राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाइका लागि बाल भविष्य योजना, तमिरे आमाका रिटायरमेन्टका समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना, वाचि मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन, त्यसैले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
2: ठिक गरिबा, आफै बाटी सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन, तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ।
3: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त, हैन बुवा? सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हिटो छ। झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-5970-217 नि सम्पर्क हरे।
4: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या, ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
5: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रेक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
4: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
5: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
6: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
4: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
7: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिपर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
5: सम्पर्क नम्बर 0915604670 र मोबाइल नम्बर 9848528।

0: आता
1: छावा सांप कुछ नहीं कराए सम सांप कुछ नहीं करता लिया वो अपने चल गए कुछ कराए तो वो सब कुछ सांप दिखा थे नहीं रहता
0: दिखा हो कि नहीं हो कसी कसी हिन्ना दाई
2: लिया नेपाल में पा दिना दिखा सांपन का विषय में सुन एक थोड़ा ठह गरे जा जोन खास कह खा, रातिक समय में घर भीतर बैठ सेक ई कटला से निबठाई फे सकत तर कटलक पाछ देह भाग जो निचलना कह सास फैर जो निसेकना में से लक्व हो सकता और रठ डोम जोन बड़ा रिसाहा में हिक रठ निकर फाट फूले थ डोम सांप दिन व रात दोनों में देख पड़ना वो खास कह खा, संजा बिहान देख पड़ निकर कटला से फिर लक्व हो सकता वो और रठ कैली जाटक सांप निकर कटला कल से कटलक भाग सुई था वो बड़ा कर्र से बैठे था रकत फिर पाती होकर रकत बहना हुई से था उसे का हमारे देशक तरह एक सक्कू भूभाग में पा देना बगोपने न फुनका रहना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक था
3: बर्खा छा को अनाज बिग्रिना समय में सापन का कटाई अथवा दसाई का घटना झूर बिना कथा बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा नासिबे सापन का दसाई का घटना झूर बिना कर लग पा जाए
4: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नहीं रहा वह फिर यदि सपा दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
1: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सकती था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: ८० प्रतिशत रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
7: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
8: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
6: डेलिभरीका लागि
8: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
6: टिकापुर कैलाली
9: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772
10: स्वास्थ्यका लागि पानी
11: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वनन्दे भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनी न पट्टा नि पैना त
12: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
11: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाका आन्छे के कतरा सुघर बनाकन ल बाटी
12: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
11: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864 41208 और 9846 39261

0: बिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच करना आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: घर परिवारमा सबै बिरामी आखिर स्वस्थ रहन स्वस्थ व्यवहार पनि त अपनाउनु पर्यो, तर यति हुँदा हुँदै पनि सबै एकलासो कहाँ हुन्छ र? कहिले कोही बिरामी कहिले कोही बिरामी, म त दिक्क भइसक्यो। कसो कालले छिटो नलाग्यो
2: होइन चाहिने जो माइलो के बर्बर बर्बर कराइरहेछ, के भएको छ हौ तलाई?
1: हेर्नु न, साह्रै समस्या पर्यो क्या। कहिले के रोग आउने कहिले के समस्या आउने, म त हैरान भइसकेँ। छोरो उस्तै

0: कबू का पी रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा के ओस्ट पाटिन गतिलो ठाव से झोला अनला से लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिंठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था, कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला अनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का ट्रस बाटिन, ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई झोला उद्योग में, रट गई झोला उद्योग, हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हरटिकापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबाट मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टीकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सन मा भए म त अब
3: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टर मा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
0: ए यो टीकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
3: कहाँ हुनु भाइ टीकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
4: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
5: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
3: सम्पर्क नम्बर 0915604670 र मोबाइल नम्बर 9848518228
6: दाजु हेर्नुहोस् न भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराखेको छ तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु
7: के गरौँ त म यत्रो उपचार गरिसके कति ठाउँमा लगिसके तर निकै हुन्न
6: दाई बरु एकपटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि
7: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एकपटक
8: सत्कार मेडिकल सेवाका खास सेवाहरू ओपिडी सेवा भिडियो एक्सरे सेवा ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा इसिजी सेवा मेडिकल सेवा इएनटी सेवा प्लास्टर सेवा बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म डाक्टर हेमन्त स्वार टिकापुर ब्लक नम्बर 7 गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड टिकापुर फोन नम्बर 0915600095 मोबाइल नम्बर 9844247359

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो कहा कना हो। बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी राहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में, रट गई यहाँ झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम, टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: नरेन दादु मैं तो अपना फोन आईटी डर त्या गई नो है बहुती कहाँ बाती
1: ओ गोंदे में सुतल बाती बाबू चोली न भरी
0: फौजी कहाँ से काटू अपना हरक आदर पावे तो सफा सुखर बने लो बाती तर फिर काटी तो जा रहा अपना है ना
2: यहाँ पोली ऊपर कट लगो नानी अपना एम्बुलेंस है ना खबर तो करना बाटा कटाबेर में को आप ना हो
0: ना ते भौजी हमरे बाटी अपना है ना कुछ नहीं हुई बिन गुआरा है ना जिन चलेगी वो नरेश दादू एम्बुलेंस में ना समय लागे से था लगा के क्यों मोटरसाइकिल बाक लाचे वह में बैठा कर भौजी है ना सरपरन सा उपचार केंद्र ले जीना तैयारी करो पड़ल
1: ये बेला का खाना जात फे दी है न्यू इतना स्वयं सेविका दीदी
0: हो अपना ठीक करी डॉक्टर और निकट सम जरमेन कुछ से खवाई नहीं हुई
3: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाकना सपवा कटलक अंगान स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस गेलक लुगा गरगहना घरी पेटी मुन्द्री बाकल से फफर करारी बेरमिया अपेले से झन समस्या बिना हुए से बेरमिया न शांत रह सहयोग कर पठा क्यूमने सपवा कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी लिए कस खबना फिर कठ असी कर्ण से रक्त संचार में समस्या हुई सकता जेहीले करबेल सपवा दशलक शरीर का भाग काट खा फाक पौना अवस्था थे आई शिक्षा
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेट दिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो कहा कना हो। बाबा के वस्त बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहा था।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लंग वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में, रट गई यहाँ झोला उद्योग। हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: जब जब गर्मी महीना आउँछ तब तब अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमहरूको याद आउँछ। म्याङ्गो, लिची, कोला, स्ट्रबेरी, कुल्फी, चोकोबार, चोको फनबार, आहा कति मिठो, मलाई त साह्रै मन पर्छ। यति मात्रै कहाँ हो र, शुद्ध दूधले बनेको अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमको खोवा कुल्फी, कर्नेटो र पार्टीहरूको लागि फ्यामिली प्याक, पार्टी प्याकका सुविधा हुनुका साथै अन्य विभिन्न फ्लेभरका आइसक्रिमहरू र सादा आइस बलक पनि उत्पादन गरिन्छ। मैले त वर्षेनी खान्छु, अब खाने पालो तपाईँको, जुन ठाउँ जानुहुन्छ उही ठाउँ पाउनुहुन्छ अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमहरू। एकचोटि खोजी खोजी खाउँ है।
4: यदि तपाई अमूल्य ब्रान्डका आइसक्रिमहरू बिक्री वितरण गर्न चाहनुहुन्छ भने धरौटी राखेर डिप फ्रिज उपलब्ध गराउने सुविधा रहेको छ। सम्पर्कको लागि बर्दादेवी डेरी उद्योग, टिकापुर 1 ब्लक नम्बर 13, सम्पर्क नम्बर 98584-89455 र 98673-69622।
3: रियल मिल्क, रियल आइसक्रिम, अमूल्य आइसक्रिम, खोजी खोजी खाऊ यी ब्रांड का आइसक्रीम जहां पनि उपलब्ध छ।
5: सीतापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।
6: आइहो बड्डो, घर कहिया सिज्जैबो? पाछसे सुरु करल मने घर सिज्जार सेक्ल।
1: अरे का करुरी बुढिया, कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिल्बो मिल्बो नि करत का कै नहो का
6: मिस्तरान बर्जना हुकन घर हेरो ना, कटा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्र फे पटानी हुइन कि गुंगुआ बुढो हो ना, कबु कहुँ र घुम जाए त था पाए।
7: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार, पार्टीशन, स्टील की रेलिंग, आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना, खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना, विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
8: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस, जमरा के उपार, टीकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 98484-53-26।
9: कर्णाली नमूना मावि टीकापुरमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 विभिन्न संकायमा भर्ना खुल्यो।
10: कर्णाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टीकापुरमा विज्ञान र इन्जिनियरिङ संकायमा उत्कृष्ट नतिजा सँगै शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 कानून, होटल म्यानेजमेन्ट, मानविकी र शिक्षा संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुलेको सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा जानकारी गराइन्छ। सिट सीमित छ, आजै सम्पर्क गर्नुहोस्।
9: जेहेन्दार प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थी र खेलाड़ीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको छ।
10: कर्णाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टीकापुरका विशेषताहरू:
9: फराकिला कक्षाहरू,
10: विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला भएको,
9: पुस्तकालय तथा ई लाइब्रेरीको व्यवस्था भएको,
10: खेलकुद सुविधा,
9: कम्प्युटर शिक्षा,
10: स्वच्छ पिउने पानी,
9: क्यामेराको निगरानी र यातायातको सुविधा पनि छ।
10: कर्णाली नमुना माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली, सम्पर्क नम्बर 98584 24167।
9: तपाईको भविष्य निर्माणको एक सहयात्री।
11: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

जेगुर बाबा घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपन के मन की आवाज, समुन्नत समाज के रक्षा मावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज की विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम निशाना के सलाह के बैठक सकु सकु रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संगे स्वागत के संगे अभिवादन करे चाहत के साथ भेटे भाई का चौधरी और यो रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज जिससे कि हमारे वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टीकापुर एफएम एप्स हमारे पात्र नेपाली पात्र मार्फत के सुनी सकते इंटरनेट के पहुंच रहा संघारे हुए अपने ठाव से संघारी के छिन बहाल खबर बिल्कुल गर्मी बा लागत दुई चार दिन हुई गलत हफ्तों दिन हुई एकदम जोरदार गर्मी लागत व्यस्त हो लगभग सुदूर पश्चिम के फेन कोई कोई ठाव में कैलाली कंचनपुर और फेन एकदम गर्मी बा लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बा घाम कहिए जो मौसम विद होगन के कहाई बा तो एकदम गर्मी बा तो गर्मी के कारण एकदम ख्याल करबी गर्मी के कारण एकदम ख्याल करती काम करबी गर्मी के कारण ढेर चीज समस्या देखा परी परत तब मारे अपने गर्मी है मद्देनजर कहिए काम करबी कर अर्जी अनुरोध और निवेदन करब कहे कि गर्मी के कारण लू हुई से कि यानी कि चक्कर आई से मनई घामे कारण बेहोश हुई सकते हैं घामे कारण शरीर में पानी के कमी हुई सकत हर एक चीज में एक समस्या हो सकत का घाम के कारण तब मारे एकदम ध्यान देवी जहां तक समाचार सुनती बाटी जसिन तसिन मतलब बेहोश हुई समाचार जहां घामे कारण तमाम मेरे घटना हुई समाचार अपने को सुनती बाटी तो उनसे हम बिल्कुल बचा पड़ना एकदम जरूरी बा सेगवी कल से काम एकदम काम करना हुई कल से 12 बजे से 5 लगभग 3 बजे सम दिन के सगवी कल से सगवा तो ना निकल भी घर से बाहर और निकल भी कल से एकदम सुरक्षित अपना के छाता ओढ़ के नेंगी कल से फिर कुछ कुछ राहत हुई कही के मैं आप लोगों का नाम काटी निशाना लगे 0991-5161-255 के लाइन खुलाई बा कार्यक्रम में सहभागी जाने कार्यक्रम में आई का नाम जानकारी करती कार्यक्रम के शुरुआत में श्री गणेश कर बैठो रमायलो गीत से गीत के बाद समय ने बाटो दान करते कर 0991-5161-255।

गर्दै कर्वी कार्यक्रममा सहभागी जनैते कर्वी कार्यक्रममा अपनेकर हाम्रो रमाइलो सहभागिता रहिकनामे अपनेकन कहना चाहतु तो कार्यक्रममा आइते कर्वी कार्यक्रममा सहभागी जनैते कर्वी कोही टेलिफोन लाइन मेल बटन कि लागत मिन हजुर राम राम ओके नहीं हुई वहां लागत महीन अपने हुए कहीं डायल करते कर भी सुने इकानबे पांच एकसठ दुई सौ पचपन अर्थात जीरो नाइन वन फाइव सिक्स थ्री वन टू फाइव लाइन खुला संगे जनाऊनी कहा को दिमाग खेना प्रश्न था उनके अल्लाह की दस्तावेज नासवान पुरखौली उनके शेर संपत्ति झलकना मेरा एक प्रश्न हमने लेके आई थी और वो प्रश्न के जवाब अपने को देख पाना रहा पहलो जन भी तो दोस्तों में दोस्तों जन भी तो तेसरो में तेसरो जन भी कल से कार्यक्रम के विनर हुई भी कार्यक्रम के विजेता हुई भी कार्यक्रम के विजेता है सौ रूपये के रिचार्ज कार्ड हमारे मतलब पठाई ठीक है पड़ल कहे कि कार्यक्रम में फोन करे काम लागत नहीं तब मारे पठाई पड़ल और दो तीन जाने तीन तीन ठोक क्वेश्चन जान ले भी मतलब प्रश्न के उत्तर जान ले भी कहे से हमारे एक जन हम गोला पर्था से विजय करा पड़ना एकदम जरूरी रह ओके कार्यक्रम आई थे कर भी सहभागी जनते कर भी कार्यक्रम में अपने को हमारे रमायल सहभागी तरह का नाम जानकारी करती है ठीक ठाक गीत जोड़ा गीत के पास मैंने बात डाल करते कर भी सुने कानबे पांच एकसठ दो सौ पचपन।

हजुर, डोलारे बिल्कुल रमाएर गीत जोडी कार्यक्रम एकदमै नयाँ गीत हो यी, भर्खर रिलिज हुई गीत आफ्नोकर सुनाइलोमै बिहान के 9 बजे रिलिज हुई हो यी गीत आज मैं अपने कान मी कार्यक्रम में चाहे फर्स्ट चट बजाइन के पड़ा मतलब हमारे रेडियो में पहले चट बदल गीत हुई और अपने को गीत एकदम माया करबी जो भर्खर आज रिलीज हुई गीत हो यानी कि बजार में आयल गीत हो आज यूट्यूब में अपने पाई सक थी टीम ब्रोडर्स यूट्यूब चैनल में सार्वजनिक हुई बा विजय चौधरी और वस्ती के समीक्षा चौधरी के आवाज में पाछक समय में ये कलाकार हुकुरन के गीत एकदम मजा मजा थारो गीत हमें सुने पाई थी हमें एकदम खुशी लागत अपने कान एकदम खुशी लागत थे क्या हमारे थारू पौराणिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक आधुनिक हरेक मेरा गीत हमारे सुनेक पर्ना हो हमार कला संस्कृति हेफेन हमन एकदम बचाए पर्ना बा और थारू इंडस्ट्री हेफेन आगे बढ़ाए पर्ना के कारण से असुनेसिन गीत हमारे सुन्टीबारी तर संस्कृति के नाम विकृति चाहे बिल्कुल ना कर भी संपूर्ण कलाकार टीम कन्मे कहना चाहम और विकृति कहना चीज ऐसी चीज हो जोन चीज छोट मोट कारण से फेन हमन विवाद में हो लगभग तब मारे उचित चाहे नई नन्ना मजा हो संस्कृति है हमारे अंगल ना हो तर संस्कृति बिगड़ना ना हो कोई भी अंगल से अपने उनके सोच बिगड़ से उचित नहीं करना हो कथी होस्त कि मैं भी कार्यक्रम हो निशाना निशाना में विशेष करके पुरान पुरखा उकरण के अल्लिखित दस्तावेज नासवान पुरखौली उकरण के शेर संपत्ति झलकना मेरा एक प्रश्न हमारे अपने उकरण के संग लेके आई थी और वस्ते वस्ते गीत हमारे अपने उकरण संग फे मजा मजा गीत संगीत थे हमारे अपने उकरण संग जोर थी अपने उकरण संग हमारे गपे करते तो जे जहां हुई भी करीब पर 45 बजे संगे संगे यात्रा करे पर एकदम जरूरी बा फटाफट डायल कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनाई कहना मैं अपने उकरण निवेदन करती बार तो कार्यक्रम में अटे कर भी सहभागी जनाते कर भी अध्यक्ष गीत जोड़ गीत के पास समय नहीं बाटो डायल करते कर भी 091-5161 लाइन खोलेगा।

हजुर, सजना से प्यार हो गेल बा, तोहन से प्यार हो गेल बा, बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रम में जोड़ी कार्यक्रम में बाटो में हमी सैनिक के साथ देते हैं भाई आकाश और यो रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz सगारी कहर बाटी का करते बाटी कसे के चलता अपने के दिन कसे के बिताए बाटी समय और कसे के अपने संगे मतलब ये गत्रा गर्मी के समय बा का करके अपने के दिन बिटत करना मैं अपन कहना चाहता हूँ। और कार्यक्रम में आईबीकाल से बिल्कुल शीतर शीतर महसूस करती आई कार्यक्रम में अपना गर्मी बा गर्मी में अपने और हमारे रमाइलो गफ हुई और कार्यक्रम में मजा मजा जनाऊनी कहकूट दिमाग खेना प्रश्न थारण के लेखित दस्तावेज नासवान प्रखौरी के शीर संपत्ति झलके नाम एक प्रश्न हमारे अपने के संगे कोयल बटे लाइन में। हजुर, राम राम। अब फेन सायद नहीं हो लागत मिहीन टेलीफोन लाइन में के कार्यक्रम में इटे करबी कार्यक्रम में सहभागी जन इटे करबी ओके कार्यक्रम में चाहिए अपने संगी डायल करते करबी 91.5 61 255 दी दोपहर एक समय में अब चाहिए कल करबी बीच में संपर्क टूटा के ना जाते दिखने में अर्जी कर दी ठीक ठोक गीत जोड़ा फैन से गीत के बाद समय ने बाटू डायल करते करबी 91.5 61 255 के लाइन खुल रही बा।

0: हजुर आओ आओ ना दिल में बैठ जाओ ना बिल्कुल रमाइलो गीत जोड़िए बठी पर कहे व्यापारिक विषाम देना बेला हो गई कहे साठ कमर्शियल ब्रेक उठ जाए ब्रेक के पास सब नहीं बाटू रेडियो छोड़ के कहूं फेना जाए भी तब संग कहे व्यापारिक विषाम अपने को डायल करते क्या विश्व 91561250 निशाना लगाए कर दी। नरेश दादू
1: मैं तो अपना फोन आई की दौड़ से आ गई नो है बहुत ही कहाँ बाती
2: ऊ गुंडे में सुतल बाती बाबू चोली न भरी
1: फौजी कहाँ से काटू अपना हन हरक आदर पादर तो सफा सुखर बनाई लो बाती तो तर फिर काटी तो जा रहा ना अपना हन
3: यहाँ पोली ऊपर कटल हो नानी अपना एम्बुलेंस है ना खबर तो कर लो बाटा कटा देर में को आप ना हो
1: ना से बहुजी हमरा बाती अपना हना कुछ नहीं हुई बिन गुआरा हना जिंसर एक दिन वो नरेश दादू एम्बुलेंस लेना समय लागे छे था नगर के एको मोटरसाइकिल बाकल छे उहे में बैठा के भौजी है ना सर पर से उपचार केंद्र ले जीना तैयारी करो पड़ल
2: ई बेला का खाना जात थे दिए न्यू इट ना स्वयंसेवी का दीदी
1: हो अब ना ठीक कली डॉक्टर रो निकट सम जरमेन कुछ थे खवाई हुई
4: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाए क्लास सपवा कटलक अंगना स्थिर बनिना प्रयास कर पठा तम्म कस गेलक रुगा गरगहना घरी पेटी मुंडी बाकल छे फाफर करारी बेरमिया अप्रैल से झन समस्या बिना हुए कोशित बेरमिया न शांत रह सहयोग कर पठा क्यों मने सपो कर लगठाओं से ऊपर दौड़ी लिए कस खब बनना थे कठा असिक करने से लगत संसार में समस्या हुई सिखा यही ले करबेल सपो दस लग शरीर का भाग काट खा फाक पड़ना अवस्था थे आई सिखा
5: सर्पदंग से संबंधित भर पर्द वो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंग से उपचार केन्द्र कहाँ बाकी था पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में हेरा सेती था
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बर बर
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटाक था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं सीखो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो तो कहा टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98 484 22 373।

कहाँ बाटो मोर राजकुमार बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रम जोर थी हम के लगा के लवल कार्यक्रम के निर्धारित समय डेकर काट लागल टाटा बाबा के जाना बेल हम रेडियो साथी सबको धन्यवाद और टेक्निकट के साथ दे हुए भाई आकाश चौधरी फिर ढेर धन्यवाद देते अंतिम अक्षर रमाइलो गीत छोटी और कार्यक्रम में भेटना बाजा करती जहां रवि स्वस्थ रवि व्यस्त रवि गर्मी बा गर्मी है ख्याल करती काम करती कना अनुरोध और निवेदन करती अंतिम अक्षर रमाइलो गीत छोटी और कार्यक्रम में भेटना बाजा करती मैं विष्णा का चाहम राम राम जय देव जय गुरु बाबा शुभ दिन आपके पर शुभ रहे रेडियो ठीका पर FM सुनते करती।

0: हेलो
1: हेलो।
0: मजा बाटो
1: हाँ ठीक है बा, 8 दिन का है नहीं लौटा।
0: मोर ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलता तब आई नहीं पाई ना मैं तो जल्दी आए एकला रहूं। एक तो खुशी बाट बा कल आई तू मई तब भेटक मजा से
1: कल।

भुक्तानी गर्ने समय बिहान 8 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टिकापुरकै लाली।

0: बाबू, ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
1: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
1: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हर्टिगापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबाट
3: मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
2: डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
2: टीकापुर सामुदायिक पुस्तकालय टीकापुर कैलाली को बंद 17 होने बारे को सूचना। टीकापुर सामुदायिक पुस्तकालय को जेठ 9 गते छैठौं चुनावी साधारण सभा में विधान बमोजिम को गणपूरक संख्या अपुग रहेको हुँदा तपसिल को मिति स्थान र समयमा बन्द सत्र हुने भएकाले पुस्तकालयका आजीवन र संस्थागत सदस्यहरूलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। सभामा पेश हुने प्रस्तावहरू हाल विधानको धारा 27 को गणपूरक संख्या संशोधन सम्बन्धमा हाल विधानको कार्यसमिति गठनको दफा 16 को उपदफा 6 थप गर्ने सम्बन्धमा तपसिल मिति 2083 साल जेठ 14 गते समय बिहान 8 बजे स्थान टीकापुर सामुदायिक पुस्तकालयको सभा हल।
5: गरेको भए हैन, गरिहाल्नुस्। यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
6: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बीमा कभरेज, न कुनै फाइनान्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
5: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
6: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
5: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
6: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
7: ए रुक रुक रुक, के भयो, किन कराएको यस्तो?
8: दाई, यस्तो पनि हुन्छ र? 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे।
9: इन्सेलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड। यति मात्र होइन, लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
7: हो र? हो नि, इन्सेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड।
10: ओहो, आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 1-2-3 हास डायल गरी वा एन्सेल एपमा गइलिनुहोस्। एन्सेल, नेपालकै लागि।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजीक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने को स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम बाम। अपने उग्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हम पात्र और नेपाली पात्र ऑफिस सुन्टीहरुबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से शिवभण्डार गृह संचालन व्यवस्थापन समिति के सहसचिव और सदस्य गृह निर्विरोध पदाधिकारी में सहमति प्रयास करती कैलेलीकी किसान बहुबाली खेती में आश्रित 2-3 बाड़ी संग लगा के आमदानी लेती किसान शिवशक्ति पदाभार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के आम भेला सम्पन्न संकलित काठी लीलामी के विषय में छलफल अभियुक्त पछिओटी में गंभीर बना सांसद हुकन के आग्रह टीकापुर स्थापित शीत भण्डार गृह के संचालन तथा व्यवस्थापन समिति की निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुआ वैशाख 27 गते शुरू हुलक साधारण सभा संख्या नैपुगे स्थगित हुलक जेठ 10 गते और सभा के बैठक उठलबाट सभा में गणपूरक संख्या पुगल पाछा व्यवस्थापन समिति की निर्वाचन प्रक्रिया खबोटिलबाट शीत भण्डार गृह मंत्रालय तथा व्यवस्थापन समिति की 11 सदस्य कार्य समिति के लाग 3 जना महिला सदस्य 2 जना खुला सदस्य 1 जना दलित सदस्य सहसचिव पद के लाग मनोनयन दर्ता कलग उम्मेदवार मध्ये कुछ मनोनयन पत्र फिर्ता लिल्पा निर्वाचित हुना हुलबाट अध्यक्षमा पदमा निरबहादुर साह कृष्ण प्रसाद बजगाई उम्मेदवारी पर्लबाट अध्यक्षमा पदम चतुर प्रसाद खनालो संगमा शाही उम्मेदवारी पर्लबाट सचिव पदमा धनीराम चौधरी दिनेश कुमार थारूकी उम्मेदवारी पर्लबाट कोषाध्यक्ष पदमा जनक कुमारी चौधरी हो हीरा देवी चौधरी उम्मेदवारी पलबाट पदाधिकारी में आवश्यक सेधी बढ़ी उम्मीदवारी पलक सोमवारसम सहमति के प्रयास करना तर सहमति नई हुलक मंगलवार बिहान के 8 बजे हो मतदान करने निर्वाचन संयोजक कुमार राशाही जानकारी दिलाट रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना टीकापुर नगरपालिक जानकी गांवपालिक सिंचाई के कमाण्ड क्षेत्र के जल उपभोक्ता के संयुक्त लगानी में टीकापुर में शीत भण्डार गृह स्थापना हुआ। शिवशक्ति पादाभट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के आम भेला सम्पन्न हुआ सोमवार हुलक भेला के सामुदायिक वन खैर जात के सुक्खा तथा ढलक पर्लक रूख कटानी तथा संकलन कला को वकर बिक्री वितरण के लाग सहमति जुटेना आम भेला कलक सामुदायिक वन वाक्य अध्यक्ष भीम बहादुर साउद बोटिलोट अध्यक्ष साउद सामुदायिक वन उपभोक्ता उनके हुईलक असिन निगरानी करना फे आग्रह कलट आम भेला हां संबोधन करती जानकी गांवपालिक के वड़ा नंबर 9 के वड़ा अध्यक्ष खगेन्द्र भंडारी के सामुदायिक वन नमस्ते हुईलक आमदानी हां सही ठाव सही रूप लगानी करना आग्रह करती वड़ा में फे सामुदायिक वन हां सघना बोटिलोट पार्टी प्रतिनिधि के तर्फ मस्ते बोल्टी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी के प्रकाश विश्वकर्मा सामुदायिक वन मजाक काम कतिपटी वन मगलक आमदानी सदुपयोग करना सुझाव दिलाट राष्ट्रीय मावि पाताभर्की विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ओट सामुदायिक वनवा के आमदानी के कुछ भाग विद्यालय में फिर लगानी कलक मजा हुना बुटिलोट सब डिवीजन वन कार्यालय टीकापुर के प्रमुख दिलीप कुमार यादव सामुदायिक वन देहोर प्रक्रिया पूरा करके वन मरलक खैर संकलन करके बोटेटी याकलक लीलामी प्रक्रिया मल जायपना सुझाव दिलाट भेलामा कार्य समिति के पदाधिकारी उपस्थिति उपभोक्ता तथा विधेयक संघ संस्था के प्रतिनिधि राजनीतिक दल अन्य सरकारवाला हुकन के उपस्थित रहलबा 435 उपभोक्ता अलग शिवशक्ति पादाभट सामुदायिक बनमा 378 हेक्टर क्षेत्रफल में फैलबा सामुदायिक बनमा साल सिसम खैर जामुन असना हल्दू कुसुम सिरिस बेदवास लगायत के वन प्रदावार रहलबाट टीकापुर चार बागमा रहेके केरा किसान टिकेन्द्र धामी केरा खेती भित्र मकई खेती कलबाट धामी के वर्ष मकई के 2 बाली लेना तयारीबाट केरा खेती के भित्र एहे चोक उत्पादन लग मकई बेच के टिकेन्द्र के बारी में फे केरासंग मकई फस्तेना गलगबा 6:30 बजे 6.5 बीघा जमीन में केरा खेती करलसंग मकई खेती कलबाट 100 लाखौं मकई उत्पादन लेहे सकलक धामी के बारी में फे मकई बा लम्बा समय से 21 बीघा में केरा खेती करती रहल धामी गत वर्ष फे केरा भितर मिर्चा वो लाही खेती करल रही खेती करती रहल धामी विगत में करना केरा खेती के समय फिर परिवर्तन कलबाट विगत म असार में केरा लगेना धामी दुई वर्ष से मंगसिर में आधा जमीन में मंगसिर में केरा लगेलाबाट टीकापुर पांच पहाड़ीपुर की किसान शेरबहादुर साउत गत वर्ष असार में केरा लगेलाबाट केरा खेती के बीच में असोज महीना में वहां मकई लाही खेती कलबाट बेमो मौसमी मकई तैयार हुलक मजा फायदा हुलक वहां के कहे वहां के बारे में अब केरा में फिर मजा फसल बाट बहुबाली खेती हुए कि जमीन में एक समय में दुई वा दुई सीधेर बढ़ी बारी लगेना प्रविधि हो बहुबाली खेती के किसान केलाक दूर आमदानी दिलेना हुलक किसान आकर्षित हुलबाट एक खेती में मुख्य नगदे बाली संग अन्य तरकारी अन्न बारी लगलग जमीन के अधिकतम उपयोग हुना उत्पादन में विविधता हो आमदानी बढ़ेना कृषक कृषि प्रविज्ञ बोटेलबाट बहुबाली खेती किसान केलाक फायदाजनक लगोटिलोट डाक्टर अधिकारी के अनुसार मुख्य बाली के अलावा बीस के हुला खाली जमीन में और बारी लगे से उत्पादन बढ़ी ले सेकना हो वो एक बाली में रोग किरा नई नुकसान हुए से फिर और बाली में से उत्पादन लग किसान के घाटा नई हुईना कैराली में स्वयं किसान केरा खेती में लगल बाट यहां की करीब 1000 हेक्टर जमीन में केरा खेती करते हुए केरा के उत्पादन लेना एक वर्ष बढ़ी समय लगना हुलक एक वर्ष भीतर केरा के बीच में जमीन में और उत्पादन ले सकना वो फल फूल में फिर अन्य बारी लगा के उत्पादन ले पड़ना वहां के कहे रहल बा। खोज खबर में एक विश्राम विश्राम पास फिर से विश्व तिरबी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुरमा
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
4: ईसीजी सेवा
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
3: फोन नम्बर 9894827359 र 9848423059 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै
5: शरीरमा लाल वा फुस्तर छुअबेर ठहानी बिना स्पर्श शक्ति हेरेलको निखुन्जिना डाग देख पर्लसे हात द्वारा झमझम गर्ना तथा मास सुहाक बठिना हुइलसे कुष्ठरोग हुइसेक्ठा
6: कुष्ठरोग महिला वा पुरुष जेहिफे लागसेक्ठा कुष्ठरोगको शंका लगतेकि लगभग स्वास्थ्य संस्था वा साइनिङ अस्पताल आइएनएफ नेपाल बाँके जानकी तीन मानपुरमा सम्पर्क गरी
5: महिला उग्र अस्पतालसम्म आइक्लाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइक्लाक आफ्नो घरक पुरुष उग्र मद्दत गरी
6: कुष्ठरोग मुक्त समाज निर्माणका लागि साइनिङ अस्पताल आइएनएफ नेपाल बाँकेसे जनहितमा जारी सन्देश
0: विश्राम पाछा फिर्से सहरबा डरेधुरामा रूखमसे खस्के एक बाल विकास शिक्षिकाकी मृत्यु हुलवा जिल्लाके अजय मेरू गाउँपालिका एक खतेडाके 37 वर्षीय लक्ष्मी भण्डारीकी आइतबार खास घटनाक्रममा रूखमसे लड्की मृत्यु हुलवा भण्डारी घनघनस्या

0: चालक मदन राजदेव कोटा स्थान 60 अस्पताल को ठेक्क अगाड़ी संपर्क नंबर 9849588008।
1: विश्राम पाशा फिर से स्वागत बा सांसद शुक्ल मुलुक के कुल बिरेजु 7 अरब खर्ब 55 अरब रूपया बराबर के पुग्ल कति बिरुजू के फर्सियो कर्नाशक को गंभीर वनपना जोड़ दिलाट प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत के सार्वजनिक लेखा समिति की आज की बैठक में सांसद शुक्र कानून के परिपालना आर्थिक पारदर्शिता और जवाबदेहिता के अभाव के कारण देश के बिरुजू फर्सियोट के अवस्था में निराशजनक बल्ल बोटीलट सांसद शुक्र बिरुजू फर्सियोटमा नीतिगत रूपमा देखलाख समस्या कानून निर्माण कुन कुन कानमा संशोधन आवश्यक हो कि यकिन गर्न तथा बिरुजुकी समस्या सामना गर्न कनफी जिम्मेवारी बन्न हो कि लगायतकी विषयमा यकिन विवरण लन्ना सरकारसँग कलबाट बैठकमा अध्यक्षिन 10 ठाउँ मन्त्रालयकै तर्फमा से सचिव सहसचिवगणके मन्त्रालय माताहतकै निकाय बिरुजुकी अवस्था महालेखा परीक्षकै 63 औं प्रतिवेदन देखेलक बिरुजु फर्सियोटकै अवस्था सम्परि छेण के लाग मंत्रालय करती रह काम बारे जानकारी कर रहे वहां को विशेष करके बिरुजू पर्सियोट के लाग नीतिगत रूप में समस्या लग कैयों स्वायत्त निकाय में नियुक्त हुईलक ऐना व्यक्ति हो निकाय बिरुजू के फर्सियोट में जिम्मेवार नहीं देखलक संबंधित प्रदेश और स्थानीय तह में गैलक पूरा निकाय में बिरुजू फर्सियोट में समस्या लग बारे में थेरुसिन मंत्रालय के सचिव और सहसचिव जानकारी कर रहे यह समाचार संघ खोज खबर वाले देना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से एक चीज भंडार गृह संचालन व्यवस्थापन समिति के सहसचिव और सदस्यों को निर्विरोध पदाधिकारी में सहमति के प्रयास करते शिवशक्ति पाताभट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के आम भेला सम्पन्न संकलित काठ नीलामी के विषय में छलफल करेली के किसान बहुबारी खेती में आकर्षित 2-3 बाली संघ लगा के आमदानी लेटी किसान और बेजू के फर्सेट में गंभीर बना सांसद थुकन के आग्रह लीटा बकला खोज खबर तरह पराजी मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद लिटिया बकला खोज खबर से मई सीता चौधरी विदाई टू एक 6 बजे की खोज खबर सुना सीखी सामुदायिक रेडियो टीका ऑपरेशन सुनती रवि राम राम।
2: उद्यान घास झपास जिंदा हो एक घर फुटबल बंद कर विवेक वहाँ का अभिलन वहाँ झपचार और ना जाओ कह रहा हूँ
3: ओ हेरो त उमर सब भागल पागल की का हो विवेक न एक हरी स्कूली फुटबल हेर लगता का जैसा पो आप
2: देव आली मेन तो सब काटल मुना मुना
4: विवेक जिना क्या संघारू देव सांझ होकर झूर निचल का बैठो हमरा तू यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पुगे दी अ पारस तू घर डाबू है ना मोटरसाइकिल ले खाए कहो
3: हो विवेक है ना यहाँ खुला ठाव मसुताई झूल झलैन झुलूंग निकरा खन मारी काटी ले वही है ना हॉक दी है तू फिल्म में काट ला खल सुटी बा काटल ठाव न छो चलाई न्यूज न
4: अब मैं विवेक खाना सजिल हुई ना कही खाओ आकर कस के लग पीटी टाइम धीरे धीरे खोल देखू वो घरी वो मुंडी फेंक हार दे
3: बिठा रोशन मैं यह जाना विवेक का जुटा वो मजा धीरे धीरे निकाल दे
4: झूर चीन सापन का दसाई खतरनाक नहीं रहा समय में जो उपचार कराई से क्लसे दिखा सपन का कातल मन यहाना फेब बचाई से जीठा सकवा कटलक मन यहाना झट्टा से झट्टा उपचार केंद्र में पुगाई से क्लसे वही हना भारी क्षति हुई से जोगाई से जीठा
5: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाख लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पत्ता लगाए लाख आधिकारिक वेब पेज snackbite.nepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए जीठा
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथ ही बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसंधान केन्द्र संघ को सहकार्य में रोटरी इंटरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमांडू मिडटाउन का साथ साथ ही विश्वभर का रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लब द्वारा जनहित का लागी प्रस्तुत संदेश
7: अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
8: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
7: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका
8: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
7: अब त म ढुक्क
9: मिलन आल्मुनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
8: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली
7: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
8: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
7: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
8: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
10: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
7: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
11: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्रेक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ
9: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
8: सम्पर्क नम्बर 0915604070 र मोबाइल नम्बर 9848571828
12: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम द्वारा जनहित में जारी सन्देश
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलतु
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हर्टिगापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबाट मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार
2: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड कापुर फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन का न घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहो घूम जाए था पाए
2: यूपी भीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषत हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541326
3: बीतल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमंत स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई थी सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 0915600595 ओ मोबाइल नंबर 9842423

0: ओइ रजनी औ वहाँ 62 नम्बर लट्ठी बा देखाओ त हरसा लिखाओ त
1: मुर्गिन दाना देना जा रहा म काकर लट्ठी खा देती अब न
0: एक तो तपवा का मुर्गिन फार छे लट्ठी से डुरेले से बफा की आनो हारी छत
1: तापन घिसकाई चलाई नी होती नहीं तो अमन दस क्या कर बेन घर भीतर आई लागी कलटी भगई दी
0: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी व खादी कई का भगाई खोज लखो का
1: आरो म कीड़ा फटिंगा मुझ साफ सीधे निशा कर कई का फलाम को जारी लगाई बात तप मुर्गी खेती बुगाई नहीं थे कि बेन अपना दाखी दूर बिना
0: हो बिना तो का करना हो तप देखती की जन नागर लग्न रही देव तप तो अपना घूम का बारी वो चल गई
1: हमारे खेल सापन से डरे ना नहीं होनी मुखर थे अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चलाई लगी पति रक्षा करत लाग वह आपन बचाव करत लाग साम दसना कर था
2: सापन से दूर रही सापन रिस नी लगाई वह नी जिस के साप मने देख डरे था नी चलाख दूर रह लगी साप नी दस्त तर मुखर खेना ख्वाजा बाहर निस्कर जाना बस घास काटा बेल खाला बेल ज्ञान बेल छूबे से मन मही मार्गवार बाट कना समझ कर पट्टी रक्षा करना क्रम में साप दस लाख रह मन सापन व्यक्ति की मारक लाग रह उसी को कर फिर साप दस लाख रह
3: सर्पदंश संबंधी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लंघक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सीधा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय कञ्चनपुरको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना
6: सीटीभीटीबाट सम्बन्धन प्राप्त महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुरमा न्यूनतम शुल्कमा प्राविधिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू अध्यापन गराउन शैक्षिक सत्र 2083-84 लागि 3 वर्षे प्रमाण पत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी CMLT 30 जना सामान्य चिकित्सा HA 40 जना नेत्र विज्ञान OA 40 जना डिप्लोमा इन फार्मेसी DPH 40 जना विद्यार्थीहरूको अनलाइन फर्म खुलेको सहर्ष जानकारी गरिन्छ
5: भर्ना कार्यक्रम
6: अनलाइन आवेदन फारम वितरण शुरू 29 गतेदेखि
5: अनलाइन आवेदन फारमको अन्तिम मिति जेठ 13 गते बुधबार
6: आवेदन फारम शुल्क ₹1000 मात्र अनलाइन आवेदन फारम www.ctevt.exam.org.np को ITMS मा भरी अनलाइन सबमिट गर्नुपर्नेछ अनलाइन आवेदन फारम भर्नका लागि SA कागज पत्र ल्याई शिक्षालयमा भर्न सकिनेछ
5: आवश्यक कागज पत्रहरू
6: SEE SLC उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता सकलबाट स्क्यान गरिएको प्रति
5: जन्म दर्ता नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र स्क्यान प्रतिलिपि
6: लक्षित वर्ग खुल्ने कागजातहरूको स्क्यान प्रतिलिपि
5: स्पष्ट मुखाकृति देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो
6: कोटामा भर्नु पर्ने भएमा सो स्थानीय तहको सिफारिस
5: सम्पर्क स्थान महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर
6: सम्पर्क नम्बर 0969900044 98578004044 98487-20247 97642-33921 र 98659963520
7: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज